गीते गायने खला अजित रत्नायक। पदमालाव नयनसेन वन्नी नायकगिन गायनय सुजीव वीरसिंह संगीते सपेनवा नालक अंजन कुमार मे गीतेट।